नय सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपा उजाणै अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठार है कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे एते सुरतना पाईया नदिया अतैवाह पवह समुंद न जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनहु न विसर है अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखन सुनन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै क्या मन मंत।

धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद। केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। तिथै नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप। तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ता किया गल्ला कथिया ना जाहे। जे को कहै पिछै पछुताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर। तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर। तिन मह राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे। ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे। जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लोह। करहै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार। कर कर विखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड। जे को कथै ता अंत ना अंत, तिथै लोह लोह आकार। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार। नानक कथना करड़ा सार, जात पाहारा धीरज सुनियार। अहरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तप ताओ। भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। जिन काओ नदर कर्म तिन कार, नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खिलै सगल जगत।

0: प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे,
1: प्रभ के सिमरन दुख जम न सहे,
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे,
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे,
0: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे,
1: प्रभ के सिमरन आंधन जागे,
0: प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे,
1: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे,
0: प्रभ का सिमरन साध के संग,
1: सर्वधान नानक हर रंग,
0: प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद,
1: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध,
0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा,
1: प्रभ के सिमरन बिन से दूजा,
0: प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी,
1: प्रभ के सिमरन दरगे मानी,
0: प्रभ के सिमरन होए सुपला,
1: प्रभ के सिमरन सुफल फला।

0: प्रभु को सिमरे से पर प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता
1: प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता
0: प्रभु को सिमरे

0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभु के सिमरन सहज समानी,
0: प्रभु के सिमरन निचले आसन,
1: प्रभु के सिमरन कमल बकासन,
0: प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सिमरे से जन जन को प्रमया,
1: नानक तिन जन सरनी पया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लख दे दो पाए,
0: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते,
1: हर सिमरन नीच हो गुण जाते,
0: हर सिमरन तारी सब तरना,
1: सिमर सिमर

0: जन रता हर नाम की सेवा,
1: नानक पूजे हर हर देवा,
0: हर हर जन के माल खजीना,
1: हर जन को आप रब दीना,
0: हर हर जन के ओट सतानी।

योगाभ्यासकारम त्रम क्रिया अनक प्रकार की ये बजतना शरीर कटाए हो मैं कर राती नहीं तुल राम नाम विचार।

0: अस्त्र भगत सात की सरन
1: नानक जब जब जीवे हर के चन
0: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने
1: मिथ्या हस्त पर दब कोई
0: मिथ्या नेत्र पे

जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, जय प्रसाद सुगंध तन लावे, जय प्रसाद बसे सुख मंदर, जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, जय प्रसाद रंग रस भोग, जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, जय प्रसाद सुख से सोई जय, जय प्रसाद तू सबको माने।

0: साध के संग इहा उहा सोहेला
1: संग विसरता मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे
1: के संग ना बिरथा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे
1: नानक उदरे सा सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाव
1: संग हर के गुण गावे
0: साध के संग न मनते बिसरे
1: संग सर पर निस्तरे
0: साध के संग लगे परम मीठा
1: साधु के संग काट का
0: डीठा सत्संग पे आज्ञाकारी
1: सा संगत पे हमारी
0: साध के

ब्रह्मज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी कै नाही तंदा ब्रह्मज्ञानी कै होए सफला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार।

ज्ञानी सुख सहज निवास, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी कहे हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप, ब्रह्म ज्ञानी का दस वड भागी पाइया, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेसर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना आहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता।

भगवत भगवंत भक्त का रंग मन ते बिनसे सगला परम सा संग पापा मल खोवे भगवंत की टहल करे नितनीत हर के चरण हृदय बसावे सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम सार रस पीवे हर की कथा हृदय बसावे वेद प्राण सिमरत पूजे मूल चावणा को दे उपदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो जो जपे तिसकी गत होए कर कृपा अंतर उतारे सर्व रोग का औखद नाम काहू जुगत किते न पाइये धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास आत्म राम तिस नदरी आया।

कर कृपा जिस अपनी भगत दे खिन मैं नीच कीट को राज जा का दृष्ट कछु ना आवे जा को अपनी करे बख्शीस जियो पिंड सत।

जब लग जाने मुझते कछ हुए, जब बेजाने मैं कुछ करता, जब तारे को बैरी मीत, जब लग मोह मगन संग माए।

0: संत के दुखन ते मुख पवाए,
1: संतन के दुखन काल ज्यों लवे,
0: संतन के दुखन सर्प ज्यों पाए,
1: संत के दुखन त्रिक ज्यों करमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जल

0: हल्त पल सवार
1: नानक सतगुर सेखो जी नाल समारे
0: गुर के ग्रह सेवक जो रहे
1: गुर की आज्ञा मन में सहे
0: आपस को कर कछना जिनावे
1: हर हर नाम हृदय सरदे आवे
0: मन बेचे सतगुर के पास
1: सेवक के कार निरास
0: सेवा कर तो ए ने कामी
1: इसको होत प्राप्त स्वामी।

0: अमृत बचन अर के गुन गाओ,
1: ज्ञान जान काए सुआओ,
0: आठ पैर प्रपेखो नेरा,
1: विद्या ज्ञान बिन से अंधेरा,
0: सुन उपदेश।

ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पाशाही दसवीं छपै छंद त्वै प्रसाद चक्र

0: नमस्तन करतारन नमो सर्ब तंदे नमो सत बंदे
1: नमस्तन निर्साके नमस्तन निर्वाके नमस्त रही में नमस्तन करी में
0: नमस्तंग अनंते नमस्तंग महान।

0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्र
1: नमो नमो सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्ध दा बुद्ध दा ब्रेद करता अदो उर्द अर्थन अगन ओग हर्था
2: परम परम परमेश्वरं।

0: पर प्रणाम चित चरण नाम अन शिज गात आजिज ना बात
1: भंडार अंठ अपार
0: आठ टीठ कर्म अन ब्रण अनंत।

0: कर शांत सुख मन आए बसिया, जिन इच्छा सब बुझाइया।
1: सदा कुर्बान कीता गुर बेटो, जिस दियां ए वड़ियाईया।
0: कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो।
1: वाजे पंच छेत्र तिकार सभा के

0: मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया।
1: कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया।
0: बाबा जिस तू देह सोई जन पावे पावे ता सो जन देह जिसनु होर क्या करे बेचारिया।
1: एक परम पुले फिरे दैद सिंह नाम लाग सवारिया।
0: गुर प्रसादी मन पया निर्मल।

0: चलत हुआ चलत नगरी आया।
1: कहे नानक सृष्ट का मूल रचया ज्योत राखे तातु जग में आया।
0: मन चाओ पया प्रभ अगम सुनिया।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलप है अठ नंदन प्रथम राग पहरा वह कर ही पंच रागनी संग उचर ही।

जाना। सब मिल श्री राग वह गाव है, पंचो संग बरंगन लाव है, बैरारी करनाटी तरी गवरी गाव है आसावरी। ते पछे सिंधवी अलापी, श्री राग से पंचो थापी, सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर। अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर, खष्टम मेघ राग वह गाव है, पंचो संग बरंगन लाव है।

कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो, जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुन हो संत हो, शब्द धर हो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया।

दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियन गुर बिन घोर अंधारो सूरज चंद सिरजियन एहनिस चलत विचारो सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहाओ तुद सिरजी मेदनी दुख सुख देवन हारो नारी पुरख सिरजे है बिख माया मोह प्यारो खानी बाणी तेरिया देह जिया आधारो कुदरत तख्त रच

गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन को नानक हर भज मना जेह बिद जल को मीना।

कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म भर मत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक।

गर्भ करत है देह को बिन सैशन मैं मीत, जेह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत, जेह घट

तू रहो रहो गुर गोबिंद, कहो नानक एह जगत मैं किन जपियो गुरमंत। राम नाम उर मैं गहयो, जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संग।

संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनियाकी गावै बंगली पुन अस लेखी की पई बारी ए भैरव की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावै बंगालम मद माधव गावै ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावै गायन पात्र।

राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वह गाव है पंचो संग बरंगन लाव है सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गाव आसा गुनगुनी उच्चे सुर सूहो पुन कीनी मेघ राग स्यो पंचो चीनी बैरा धर गज धर के दारा जबली धर नट्यो जल धारा पुन गाव संकर्यो स्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग

मन वजिया वादाइया, मन वजिया वादाइया। तुहानू सारयां नू आउंदा, उच्ची बोलो।

समझ लगी, मीनिंग समझ लगे, थोड़े थोड़े समझ लगे, माड़े माड़े जो ट्राई करोगे सुनन नू, फिर हुण जदों दो तीन पौड़ियां हो जाणगियां फिर तुहानू समझ लगूगी वी इह की गल चलदी आ, महाराज जी की कहिंदे आ। एक तां 6 दिन विच गैप पैंदा फिर तुसीं भुलना शुरू हो जांदा, पर कोशिश करिया करो जाके एक दो वारी यूट्यूब तो बैक करके लाइव गुरद्वारा साहिब वाला उहदे विचों एक दो वारी दुबारे सुन लिया करो। कोशिश आपां करदे आ वी जिन्ना सौखा हो सके, जिन्ना तुहानू समझ लग जावे। वड्डी उम्र दी संगत वी उह वी सुनना चाहुंदे आ नाल दी नाल, पर असीं सारी बच्चियां, असीं सारिआं नहीं बच्चिआं वांगू सुनना, सारिआं नहीं बच्चिआं वांगू सुनना, सारिआं नहीं असीं बच्चिआं वांगू सिखणा। सो इस करके आनंद साहिब जी दा पाठ असीं सारे रोज नितनेम विच करदे आ, पर इस वार इह कोशिश असीं क्लासां विच इह कीती। साखियां बच्चे बहुत सुणदे आ, इतिहास बहुत सुणदे आ, पर गुरबाणी तों असीं कई वारी दूर रहि जांदे आ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਆ ਓਨੇ ਕੁ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿ

एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरनाई सो कहो टल गुर सेविया दर्शन परसिया गुरु के जन्म।